वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूण की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई आदरणीय दादू भैया दीदी बहना हुक्र यही कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन सोरौ जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हुईना हुई कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी कर।

कार्यक्रम हुई यह कुवार 25 गते अटुआ बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बरघर संजाल समिति ठाकुर बाबा नगर पालिका बर्दिया।

0: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ। रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम अहिले बिहानको 8 बजेको छ। यस टाइम चेकका साथमा केपी पोली क्लिनिक भुरिगाउँ बजार बर्दिया।
1: हार्दिक आमन्त्रण। वेशभूषा भाषा संस्कृति संरक्षण औ प्रवर्धन गरी हारूनकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति जगाए। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में आयोजना होने 16 जीवरा धरना तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में यहां को उपस्थिति का लागि हार्दिक आमंत्रण गर्दछौ। जीवरा धरना कार्यक्रम संचालन होने मिति यही असोज 25 गते आईतवार। स्थान ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नंबर 3 जुड़पानी बगना बजार बर्दिया। आयोजक ठाकुर बाबा बर्गर संजाल समिति बर्दिया।

0: रद्द, रयनफा अध्यक्ष र महासचिव सीआईडीको फरार सूचीमा।
1: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज, गर्जन छ सधैँ बाघ झैं।
2: साइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना।
3: यी असोज 24 गते शनिबारको दिन
2: बिहान 10 बजेदेखि साइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्।
3: यी असोज 24 गते शनिबारको
2: दिन सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठेघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-442-55909 र 98-442-97-517।
4: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुनकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दिदी बहिना हुक्र, यही कुंवर महिना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में विना विलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना रिल यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: हार्दिक आमन्त्रण। वेशभूषा, भाषा, संस्कृति संरक्षण औ प्रवर्धन गरी थारून के प्राचीन मौलिक कला संस्कृति जगाए। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में आयोजना हुने 16 जीवरा धरना तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में यहां को उपस्थिति का लागि हार्दिक आमंत्रण गर्दछौं। जीवरा धरना कार्यक्रम संचालन होने मिति यही असोज 25 गते आईतवार। स्थान ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नंबर 3 जुड़पानी बग्ना बजार बर्दिया। आयोजक ठाकुर बाबा बर्गर सञ्जाल समिति बर्दिया।
1: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

0: छ रेडियो टाइगर 99.2 MHz गर्जन सधैँ बाग्छन्।
1: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूङ की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई आदरणीय दादू भैया दीदी बहिना हुक्र यही कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: Hey, fresher. You, chocolate fresher. All this joya chai stuff. मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा,

0: रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज गर्जन सधै बाग्छे रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला साँझको 5 बजेको छ।
1: पाइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना।
2: यी असोज 24 गते शनिबारको दिन
1: बिहान 10 बजेदेखि पाइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्।
2: यी असोज 24 गते शनिबारको
1: दिन सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4 देखि 5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठ्यघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 442 55 909 र 98 442 57 517।
3: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन 14 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिला पोसे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुई नारियल यह कुआत 25 गते अटुआ बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बरघर संजाल समिति ठाकुर बाबा नगर पालिका बर दिया।

0: यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। के तपाईँलाई दुना टपरी चाहिएको छ? पूजा आजा, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका धार्मिक कार्यहरूका लागि, चाट पसल, नास्ता पसल, होटल तथा क्यान्टिनहरूका लागि आवश्यक पर्ने हातबाट बनाइएका तथा मेसिनबाट तयार गरिएका सालको पातका दुना टपरी चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। थोकमा खरिद गर्नका लागि दुना 10-30 रुपियाँ दर्जन र टपरी 70 रुपियाँदेखि 90 रुपियाँ दर्जन। साथै अर्डर अनुसारका विभिन्न साइजका दुना टपरी पनि उपलब्ध गराइने सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। थप जानकारीका लागि ग्रामीण महिला दुना टपरी उद्योग मधुबन नगरपालिका 6 श्रीनगर बर्दिया 98165-0672 98224-21679 र 98125-10349।
1: वेशभूषा, संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादु भैया, दिदी बहिना हुक्र, यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका 3 जुटपानी बगनहा हाट बजार में विना हिलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवर 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

जो गाए। आदरणीय डालू भैया दीदी बहनों क्र यही कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन सोरौ जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में और ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिला पहुंचे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।